इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज raniecreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।
1: हेलो एंड गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। हमारे स्टूडियोज के घड़ी में एक मिनट दो मिनट हो गए हैं 1:00।

Welcome back once again. जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप कितनी पहचान रेडियो विस्पानी 79.1 किलोहर्ट्ज पर हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स बचपन से शनिवार मस्ती म्यूजिक है। अभी से लेकर ठीक 3 बजे तक साथ है हमारा आपका आपके साथ सो। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं, अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है और आपके जन्मदिन है, कुछ भी आपके साथ खुश है, खुशी खबरी है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको बहुत सारे से बधाइयां हमारी तरफ से। जो लोग आज हमारे ब्रिस्बेन के मेहमान हैं, आप सभी का स्वागत है रेडियो विस्वानी पर। अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं, वेलकम ऑन रेडियो विस्वानी शो। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से। सिर्फ जिंदगी एक हसीन ख्वाब बन जाती है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराना चाहिए जिंदगी में। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं आपसे, बिल्कुल सही, कि जिंदगी में कोई दर्द आए, मुस्कुराइएगा।

0: अरे मुस्कुराए।
1: जादू साहब हम भी ये कहना चाहते हैं कि तेरी जिंदगी में क्यों दर्द आएंगे तो मुस्कुराएगा। आपने सुना जोहेब हसन की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग पर्दे पर अमितेश के लिए, और इस गीत को मैंने लिया था फिल्म पर्दे पर कुमार गौरव के लिए, इस गीत को मैंने लिया था फिल्म स्टार से। चलते हैं उसी फिल्म का अगला गीत सुनते हैं नाजिया हसन की आवाज में।

एक बार फिर स्टार सिलेवा गीत आपने सुना नाजिया हसन की आवाज में। यह शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो ब्रिस्बेन आयाम। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त ब्रिस्बेन टाइम हमारे स्टूडियोज में 12 मिनट हो गए हैं 1:00। अब बहुत समय नहीं लेते हुए दोस्तों चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं फरमाशी प्रोग्राम, क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। खास करके आज की पहली फरमाइश है हमारे पास दक्षा सोलंकी की ओर से, जो हमें सुन रही है लेस वेगस में। दक्षा आपके लिए अनीता गोयल की आवाज में आज पहला फरमाइश आपकी है।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमेशा इस गीत को आपने लता जी की आवाज में सुना, लेकिन आज एक नए गायिका अनीता गोयल की आवाज में इस गीत को सुना। और हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं दक्षा सोलंकी फ्रॉम लास वेगास।
1: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। Save, spend, or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: Honey, ye tum kahan le ja rahi ho? Ye grocery pass wale shop se le sakte hai na?
3: Yes, baby, but no compromise with quality and health. Hum jayenge sirf MC's Indian and Island Food.
2: Aisa kya khaas hai wahan?
3: Sab kuch. Quality spices, lentils, rice, flour aur frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane ke best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. Aur fresh local produce bhi rakhte hai. Saath hi kitchenware and disposable plates ki large range kisi bhi function ke liye.
2: Are wah! इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
0: अरे शनिवार मस्ती म्यूजिक है दोस्तों, रेडियो बिस्पानी एम है और साथ है हमारा आपका 3 बजे तक। और इस मस्ती भरी प्रोग्राम में आज हम एक वैरायटी प्रोग्राम आपके लिए पूरा है, आपके लिए एक हरा भरा गीत से, यानी कि बिल्कुल एंटरटेनमेंट से एंटरटेनमेंट करने वाले हैं आपको। शायद लास्ट आवर में बिल्कुल ही फास्ट सॉन्ग्स में आप हमारे साथ चले जाएंगे। चलते हैं कैडरन पाक की और जोनी और सविता की अगली फरमाइश है हमारे पास, सुनते हैं।

0: They told me neuropathy.
1: तो दोस्तों बहुत प्यारा सा गीत, तो इस गीत में हमारे साथ शामिल होंगे थे जोनी और सविता जो हमें सुन रहे हैं कैडरन पार्क में। शिकागो की ओर बढ़ते हैं, हमारे साथ शामिल हो गए हैं अगला गीत में अमला सिंह। और अमला आपकी पसंद पर सुनते हैं आशा जी की आवाज में अगला गीत।

0: फिल्म का नाम था गीत गाया पत्थरों ने, आशा भोसले की आवाज फरमाइश करने वाली थी अमला सिंह जो हमें सुन रही है शिकागो में।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
11: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
12: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
13: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
0: और जिंदगी यूं ही ऐसे नहीं मिलती है दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती जिंदगी, ऐसे हर राह पर चलना पड़ता है, हर आंसू को पोंछकर खुद ही संभालना पड़ता है। आसान नहीं होती उड़ान कभी, हौसलों को बुलंद करना पड़ता है, सपनों की खातिर अक्सर सब कुछ दांव पर रखना पड़ता है। हमें आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी और चलते हैं परमाटा सिडनी की ओर। परमाटा सिडनी से अगली फरमाइश है हमारे पास रॉबिना उषा की ओर से। आप दोनों के लिए सुनते हैं अगला गीत क्या है।

बातचीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे रोबिना उषा फ्रॉम पैरामाटा सिडनी। हम चलते हैं अकेशिया रिच आचा फिल से फरमाइश है हमारे पास अनवर और शेरुल की ओर से। आप दोनों की पसंद।

beautiful song जिसे फरमाइश करने वाले थे अनवर और शहरुल फ्रॉम आज फील्ड. दोस्तों इसके साथ साथ हमारे स्टूडियोज के घड़ी में पौने दो बज चुके हैं. यह है शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्पानी आईएम. हम चलते हैं अगले गीत की ओर. हम बढ़ते हैं सिडनी की ओर. ग्रीन एका सिडनी से अगला गीत की फरमाइश है रजिन और मालती प्रसाद की ओर से. आप दोनों का स्वागत है रेडियो विस्पानी पर वंस अगेन एंड एंजॉय दिस सॉन्ग.

आज जरूर हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए. आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान. और समय हुआ हमारे स्टूडियोज में 5 मिनट रह गए हैं 2 बजने में. यह है शनिवार मस्ती म्यूजिक.

0: ideas in Brisbane, Queensland.
1: चलते हैं अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं. जिलमिया से फरमाइश है हमारे पास और वहाँ पर हमें सुन रहे विजय और माला, आप दोनों के लिए अगला गीत जिसे मैंने लिया है रिमिक्स पर.

बहुत प्यारा से गीत जिलमिया से फरमाइश आई थी इस गीत के लिए हमारे पास, जहां हमें सुन रहे विजय और माला, आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी दोस्तों, साथ है हमारा आपका ठीक 3 बजे तक यह शनिवार मस्ती म्यूजिक।

0: और हम चलते हैं इस सैक्रामेंटो की ओर। दोस्तों फरमाइश है हमारे पास सैक्रामेंटो से विजय और कामनी की ओर से। देखिए आप दोनों की पसंद क्या है।
1: हाँ जी, तो अभी अपनी गाड़ी भी सच दच गए, एकदम रेडी हो गया आ चुकी है।
2: सित्तू भाई जी,
1: हाँ जी, तो अभी आ चुकी है गोड़ी और ठीक है, अपनी गाड़ी भी सच दच गए, एकदम रेडी हो गया आ चुकी है। और पीछे पोस्टर देखो सित्तू,
0: माफ कीजिएगा सही गीत नहीं है, हम आपके लिए सही गीत लेकर आने वाले हैं।

शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो बिस्पानी आयाम 10 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज में, 10 मिनट हो गए हैं 2:07 हमारा आपका 3 बजे तक। शामिल हो गए हमारे साथ कामनी एंड विजयन फ्रॉम सैक्रामेंटो USA। आप सुनना चाहते हैं दादी की शादी

ब्यूटीफुल सॉन्ग दोस्तों, बहुत प्यारा सा गीत जिसे फरमाइश करने वाले थे कामनी और विजयन फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। आप सुन रहे हैं रेडियो विजयवाणी।

फरमाइश है दोस्तों हमारे पास अगला गीत के लिए जिम बुम्बा से सोनिया की ओर से। हाय सोनिया, चलते हैं आपके लिए, शामिल करें पारी टाइम पर।

चलते हैं अगला गीत के लिए। हमारे पास फरमाइश है और गीत है, गीत नहीं है, गजल गीत है, भूपिंदर और सुरेश वादेकर की आवाज का। फरमाइश है हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए, यूएसए से जहाँ पे सुन रहे विजय नाव कामनी वंस मो। आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गजल सॉन्ग।

दोस्तों इसकी फरमाइश आई थी हमारे पास गजल गीत की सुरेश वादेकर और भूपेंद्र की आवाज के वहां सैक्रामेंटो यूएसए से, जहां मैं सुन रही विजयन और कामनी। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्पानी 79 किलोहर्ट्ज़ पर, हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से आपके साथ सुसाथ है हमारा आपका ठीक 3 बजे तक।

चलते हैं अगला गीत के लिए। हमारे पास फरमाइश डेडिकेशन आई हमारे पास 8 मार्च प्लेन से, जहाँ हमें सुन रही है हमेशा की तरह अल्पना। हाय अल्पना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन। और अल्पना अगला गीत को डेडिकेट कर रही है टू हर बेस्ट फ्रेंड जो इस वक्त कैलिफोर्निया यूएसए से हॉलीडेज पर लोटोका फिजी में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और जिनका नाम है रोहितेश। हाय रोहितेश, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल द वे, एंजॉय फिजी। और आज आपको याद कर रही है यहाँ ऑल द वे फ्रॉम ब्रिस्बेन से आपकी बेस्ट फ्रेंड अल्पना फ्रॉम 8 मार्च प्लेन्स।

बात पर ऐसे गीत किशोर कुमार की आवाज का गीत पाते पर राजेश खन्ना के लिए फिल्म खड़ी पतंग से लेवा गीत डेडिकेशन आई थी हमारे पास 8 माइल्स प्लेन से अल्पना की ओर से और अल्पना ने इस गीत को डेडिकेट किया टू है बेस्ट फ्रेंड रोहितेश जो कैलिफोर्निया यूएसए से लौटा काफी जी में हॉलीडेज पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी।

क्लास के बैगन में सुरवा डाल के गीत आपने बहुत बादशाह सुना। शायद राइट ऑफ विस्वानी पर आपने बहुत दिनों बाद इस गीत को सुना होगा। इस गीत को मैंने लिया था ट्रिनिडाड एल्बम से। और देखिए हमारे बहुत से लंबासा वाले दोस्त यहाँ पर है ब्रिस्बेन में, मुझे पता नहीं और कहाँ कहाँ पर है। तो लंबासा का नाम भी एलई वैसे रखा गया है। हमारे जितने भी लंबासा वाले दोस्त है, चलते है आपके लिए खास गीत हमारी तरफ से।

लंबा सा वाले खुश ना, बहुत प्यारा सा गीत हमारे वहाँ पर जो लंबा सा के जो लोकल सिंगर्स की आवाज में इस गीत को आपने सुना। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो मैंने गिरमिट पर भी प्रोग्राम किया था लास्ट वीकेंड पर, इसके लिए हमारे पास आई गॉट द बिगेस्ट फीडबैक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर एंजॉइंग द प्रोग्राम। और हमें मांग किया गया है कि इस वीकेंड पर भी उनमें से कुछ गीतों को जिसे मैंने गिरमिट के दिन अप्लाई किया था, दे वांट टू लिसन अगेन। सो इफ आई हैव टाइम टुमारो, हम कोशिश करेंगे इस गीत को फिर से आपके लिए बजाने के लिए। इसी के साथ साथ हमारा चलने का समय हुआ क्योंकि 3 ही बजने वाले हैं और कल हमारी आपकी मुलाकात होगी ठीक 2:30 से, यानी कि 2:30 बजे से। आप अपना ख्याल रखें, एंजॉय योर वीकेंड, नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: है मेरी हमरत, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

फाइनली फाइनली फाइनली आए तो मतलब जिंदगी में मुझे लगता है जितना हम सांसों का इंतजार करते हैं उतना ही इस दिन का इंतजार करते हैं। मैं बात वीकेंड्स की कर रही हूँ भाई, हमारे वीकेंड्स जो हमें सुकून देते हैं, खुशियां देते हैं, एंजॉयमेंट देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपना वाला वक्त देते हैं। तो लीजिए जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और एक बार फिर से आपकी जिंदगी में आ गए हैं यही प्यार भरे वीकेंड्स। जी हाँ, बहुत सुकून है, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है इन वीकेंड्स में, हमारे सैटरडे और संडे के दिनों में, क्योंकि इनके साथ ही जो एनर्जी हम खोते जा रहे थे ना, मतलब पूरे हफ्ते काम करने के बाद जो थकान थी उसे हम वापस गेन करेंगे और आने वाले वीक को खूबसूरत बनाएंगे। सो यस, आपके इस वीकेंड को हम भी खास बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए रेडी हैं एक बार फिर से रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, और इस वीकेंड आपके साथ एक बार फिर से सताक्षी है दोस्तों। तो चलिए इन वीकेंड्स को खास बनाने की कोशिश रेडियो प्रस्वानी पर करते हैं और शुरुआत करते हैं इस ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, सैटरडे डिलाइट आपके साथ है सताक्षी और आप सुन रहे हैं मुझे अपने वीकेंड्स।

वेलकम बैक सैटरडे डिलाइट। आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रह्मवाणी 107.01 एम पर। यू तो हर दिन बहुत ही हसीन और खास होता है, लेकिन जब बात हो छुट्टी की तो मतलब किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं होता है कि बॉस क्या खाना है, क्या सोना है, क्या पहनना है, क्या दिखना है, कैसे लगना है, कैसे लुक्स होने चाहिए। ना, हमें जैसे पसंद है हम वैसे पहनते हैं, हम जिन कपड़ों में कंफर्टेबल हैं हम वो कपड़े पहनते हैं, हम जैसे लगना चाहते हैं हम लगते हैं, हमें उठने का मन है तो हम उठेंगे, नहीं मन है तो रहने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो बॉस अपना दिन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वीकेंड्स की होती है वो ये कि अपने बॉस हम खुद होते हैं, है ना, हमें किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना है। तो बस इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सुकून मिलता है जब सैटरडे आता है और वो बताता है कि भैया अब ना तो ऑफिस के बारे में सोचना है और ना ही बाहर से झांक के ऑफिस वालों को देखना है। अगर कोई दिख भी जाए तो उसे पहचानना नहीं है। तो अगर आपकी कम्युनिटी में, आपके आसपास, आपके अपार्टमेंट में कोई आपके ऑफिस का रहता है बंदा, तो उसे बिल्कुल मत पहचानिए और बस आज अपने में खोए रहिए और अपने राजा बने रहिए। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को भी सताक्षी के साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: आपके सुकून वाले लम्हे इस वक्त हम आपके लिए और भी खास बना रहे हैं इन बेहतरीन गानों के साथ। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गाने आपके मन के बहुत ही करीब हैं और आप भी जरूर इन्हें गुनगुना रहे हैं। तो गुनगुनाइए, क्योंकि आज गुनगुनाने पर कोई टैक्स नहीं है, कोई रोक नहीं है। आज ये वक्त हमारा है, हमारे वीकेंड्स का है और हमें इन्हें अपने हिसाब से जीना है। एक और ट्रैक आपके लिए प्ले कर रही हूं, इसे भी सुनिए और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

बार हम अपने वीकेंड्स भी लोगों के हिसाब से जीते हैं, है ना, कि भाई वो काम करना है यार, तुम्हें ना मेरे साथ यहाँ चलना है इस बार। कई दोस्त भी हमारे होते हैं जो हमें पकड़ पकड़ के ले जाते हैं और हम कहते हैं कि यार हम उसे क्या ही कहते। देखिए, ये जो वीकेंड आपकी जिंदगी में आते हैं, है ना, सैटरडे संडे या फिर मैं कहती हूँ वीक डेज में भी अगर ऐसा होता है, तो आपकी लाइफ आपकी है। कई बार कई चीजों में आप बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, आप राजी नहीं होते वो काम करने के लिए कि यार आज तो छुट्टी मिली, अब आज कहाँ ही जाएं हम, है ना, लेकिन उसके बाद भी आप मना नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जब बात खुद की हो, खुद के सुकून की हो, खुद के पीस की हो, तो यार मना कर देना गलत भी नहीं है ना। और अगला बंदा अगर वाकई आपका दोस्त है, आपका अपना है, तो वो समझेगा कि भाई बेचारा सुबह से शाम तक रोज खपता है ये इंसान, और इसको भी वीकेंड पर जरूरत है थोड़ी सी सुकून की, प्यार की, है ना। तो बहुत जरूरी है कि जिन चीजों में आप कंफर्टेबल नहीं है, आपके लम्हों में वो चीजें जो खलल डाल रही हैं, आप उनके लिए ना बोलना सीखें। ये आपकी लाइफ है और इसे आपको अपने हिसाब से जीना, एटलीस्ट वीकेंड पर तो, राइट। चलिए एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक और सुनते रहिए सताक्षी के साथ कुछ क्रेजी लम्हे आपके अपने सैटरडे डिलाइट में।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: हमारे और आपके वीकेंड वाले साथ को आप इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर। सताक्षी के साथ ये साथ और भी खूबसूरत और हसीन हो गया है, और इस हसीन पल को थोड़ा सा और हसीन करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। इंजॉय कीजिए इसे और मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, और लगाते रहिए अपने वीकेंड में चार चांद।

वेलकम बैक। इस एक और ट्रैक के इस बार आप सताक्षी के साथ हैं। कैसे गुजर रहे हैं वीकेंड्स, कैसे गुजर रहा है आपका सैटरडे? देखिए बॉस, बार बार हम आपसे यही कहते हैं कि अपने सैटरडे को जितना स्पेशल और खास बना सकते हैं बना लीजिए। अच्छा ये बताइए ना, आज कुछ प्लानिंग की है कि नहीं, या मतलब ऐसे ही ये वीकेंड्स भी गुजर जाने वाले हैं? देखिए मुझे लगता है कि लाइफ के हर एक पल की प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है, और खासकर अपने वीकेंड्स की, अपनी छुट्टियों की, अपने हसीन लम्हों की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आपका स्पेशल वन, जी आपका पार्टनर, आप जिस रिलेशनशिप में, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। देखिए कहने के लिए तो हम ये कह देते हैं कि यार रोमांस का या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का एक वक्त होता है, और वो वक्त निकल जाने पर फिर वो मजा नहीं रहता जिंदगी में, और वो जो है कितना टाइम है हमारे पास जो हम एक अच्छा वक्त साथ गुजारें। तो देखिए कहते हैं ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यार यही कह रहे हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी यही कह रहे हैं, साइकेट्रिस्ट भी यही कह रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में रिश्ता खूबसूरत है, अगर आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड खूबसूरत है, और आपके बीच में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त निकल आता है, एक अच्छा वक्त, चाहे आप पिकनिक पर निकल जाएं, आप मूवी देखने साथ में निकल जाएं, कुछ दिल की बातें खुद एक दूसरे के साथ करें, कैसा भी वक्त अगर आप एक दूसरे के साथ जी पाते हैं, तो फिर जो है वो वक्त आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास बन जाता है। तो यस, जरूर वो वक्त निकालिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने लिए, ताकि आप दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो खूबसूरत बन पाए। और वीकेंड से अच्छा जो है वो और कुछ नहीं हो सकता, कोई वक्त नहीं हो सकता एक दूसरे को वक्त देने के लिए। एक और ट्रैक इसी बात पर सताक्षी के साथ सुनिए। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट मेरे साथ।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: लाइट आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसारणी 1701 एम पर। सैटरडे आपका वो सफर जिसके साथ आपका हर दिन खूबसूरत लगता है आपको, क्योंकि इस वीकेंड के आने का इंतजार जो तहे दिल से आप करते हैं। आज भी ये वीकेंड एक बार फिर से आपके साथ है और इस वीकेंड के साथ न सिर्फ आज का दिन बल्कि आपका आने वाला हफ्ता भी बढ़िया और जानदार होने वाला है। एक बढ़िया सा ट्रैक इस वक्त सुनिए मेरे साथ इसी बात पर और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर सैटरडे डिलाइट।

कि हमारी खास और खूबसूरत बातों का सफर सैटरडे डिलाइट इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एफएम पर। कुछ पल बहुत खास होते हैं क्योंकि ये पल हमारे अपने होते हैं। देखा जाए तो कहते तो हैं हम सब की जिंदगी हमारी है, लेकिन इस जिंदगी में हमारे लिए कितना बचता है ये हमें खुद समझ में नहीं आता। हमेशा सबके लिए करते करते अपने लिए कुछ वक्त संजोना, कुछ वक्त निकालना हम भूल जाते हैं। तो फिलहाल आप अपनी जिंदगी से अपने लिए वो वक्त चुरा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में आपका है, और इसी वक्त को हम सेलिब्रेट करते हैं इस गाने के साथ। इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर सैटरडे डिलाइट एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एएम। रिसेंटली फाल्गुनी पाठक का वो गाना सुन रही थी कि मैंने पायल है चनकाई, क्यों ना आया तू हर जाई। ये गाना मतलब बहुत रोमांटिक है और एक वक्त में बहुत सुपरहिट भी हुआ था। इंडियन पॉप म्यूजिक जिस वक्त सुपरहिट था 90s के दौर में, फाल्गुनी पाठक का ये गाना एक अलग ही जलवा रखता था। लेकिन इस गाने को सुनते हुए मैं ये सोच रही थी कि अगर रात को 2 बजे कोई पायल छनका के उस हरजाई को बुलाए तो वो बेचारा हरजाई आएगा कैसे, है ना? डर के मारे तो उसकी वैसे ही ठंडे फिस हो जाएगी। तो इसलिए भाई अगर पायल छनका कर किसी को बुलाना है तो जरा वक्त से, टाइम से, क्योंकि वक्त के बाद आप खूबसूरत नहीं लगती, आप डरावनी लगती है। ठीक है जी, चलिए इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नो अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: सैटरडे का खूबसूरत साथ सताशी के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप? जी हाँ, सफर है ये सैटरडे डिलाइट का और आपके सैटरडे को खास, स्पेशल और बेहतरीन आपके लिए बनाने की कोशिश सताशी कर रही है। सो कैसा लग रहा है ये वीकेंड हमारे साथ? शेयर करते रहिए और एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट। फिलहाल एक और ट्रैक मेरे साथ अभी सुनिए और कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

यू नो व्हाट, आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस आपको कभी नहीं मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, लाइफ में सब कुछ बैलेंस कभी हो ही नहीं सकता। सपोज अगर आपको एक बढ़िया करियर चाहिए, सक्सेसफुल करियर चाहिए, तो या तो आपके फ्रेंड सर्कल का कॉम्प्रोमाइज आप करेंगे उसमें, या नींद का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बहुत सारी शादियों में पार्टीज में न जाना भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, रिलेशनशिप आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक चीज को पाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करनी ही करनी है, और ये होगा ही होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि हमारी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, कोई इम्बैलेंस क्रिएट करके ही एक चीज बैलेंस होती है लाइफ में। एक और ट्राई किसी बात पर, सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसवानी। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट इस वक्त मेरे साथ।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: सो आपके वीकेंड्स को सदाक्षी के साथ इस वक्त आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सफर है सैटरडे डिलाइट का, और सैटरडे डिलाइट के सफर के साथ हमारा आपका ये साल भी बहुत ही खूबसूरत हो गया है। तो भाई कैसे गुजर रहे हैं वीकेंड्स? कहीं बाहर जाने की प्लानिंग है? आउटिंग का कोई मामला फिट हो रहा है, या फिर घर पर रहकर ही अपने वीकेंड्स एक्सपेंड कर रहे हैं? तो शेयर कीजिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर, और एंजॉय कीजिए अभी अगला ट्रैक भी सताक्षी के साथ। एंजॉय कीजिए ऑन के प्लस रिंग टू रेडियो प्रस्वानी। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट इस वक्त मेरे साथ।

लाइफ में कई बार हम अपने आप को फ्री नहीं कर पाते, हम चीजों को पकड़ के जकड़ के रखते हैं। हमें पता है कि ये चीजें जो है ये हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उन्हें हमेशा थाम कर रखते हैं, हम उन्हें हमेशा पकड़ कर रखते हैं। ये इंसान हमें ऐसे प्यार करेगा, ये इंसान हमारे साथ ऐसे रहेगा, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम पाल के रखते हैं और हमारे वीकेंड्स का भी सत्यानाश हो जाता है इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में। कई बार जो आपने सोचा है एक्चुअली दूर दूर तक वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंसान है और हम फिर से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, फिर से हम परेशान होते हैं क्योंकि हमारी चीजें हमारे हिसाब से होती नहीं है। तो इसलिए जब आप चीजों को वक्त पे छोड़ देंगे, आपको लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिचुएशन अब आपके हाथ की नहीं है, उस वक्त आप देखेंगे कि बहुत इजीली सब कुछ आपको मिलना भी शुरू हो जाता है। कभी कभी चीजों को जाने देने में ही उन चीजों को पाना होता है, बस करके देखने की जरूरत है। इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर। दोस्तों

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: हमारे और आपके वीकेंड वाले साथ को आप एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। सताक्षी के साथ ये साथ और भी खूबसूरत और हसीन हो गया है, और इस हसीन पल को थोड़ा सा और हसीन करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए इसे और मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, और लगाते रहिए अपने वीकेंड में चार चांद।

देखिए, बातों के लिए रोज रोज वक्त नहीं मिलता है, लेकिन जब अपनों से बातों के लिए वक्त मिल जाए, मुझे लगता है वही वीकेंड हो जाता है। क्योंकि रोज इतनी जल्दी रहती है, इतनी भागदौड़ रहती है कि अक्सर हम सामने बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, लेकिन वीकेंड्स पर सामने बैठकर, बेड पे लेट कर, चलते फिरते किचन में, साथ में हाथ बटाते हुए, घर के कामों को समेटते हुए, रूम्स की सफाई करते हुए एक दूसरे से ढेरों बातें हो जाती हैं। और वो कॉफी के कप के साथ वाली बातों की तो क्या ही बात कहें, मतलब कॉफी डेट से ज्यादा मजा देती हैं वो साथ में काम करते हुए कॉफी एंजॉय करने वाली बातें, है ना। तो ऐसी ही बातें आई होप कि इस वक्त आप भी कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। और उन बातों के नाम प्ले कर रही हूँ ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए इसे और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सैटरडे डिलाइट।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Well, पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। हर एक फेज में जिंदगी के पैसा बहुत जरूरी है। आप बीमार पड़े तब पैसा बहुत जरूरी है। घर की जरूरतें पूरी करनी हो, कुछ क्लासी खरीदना हो, पैसा जरूरी है। अच्छे से ड्रेसअप होने के लिए जरूरी है। बच्चों की स्टडीज के लिए जरूरी है। जरूरी है बॉस, बहुत जरूरी है। लेकिन जिंदगी जीने के लिए एक ऐसा हमसफर जरूरी है जो शरारती हो, जिसकी बातों में शरारत हो, जिसकी हरकतों में शरारत हो, जो आपको हर एक पल मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे। अगर जिंदगी में सिर्फ जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपने हर कंफर्ट को लेना चाहते हैं, तो फिर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर जिंदगी में मुस्कुराना चाहते हैं, जिंदगी को थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं, तो एक ऐसा हमसफर बहुत जरूरी है जो आपकी जिंदगी को आपके लिए थोड़ा सा आसान बना दे। जब आप थक कर आए तो उसकी शरारत भरी बातों से आपके होठों पर मुस्कुराहट आ जाए, है ना। और उसी शरारती हमसफर के नाम ये अगला ट्रैक है। इसे एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

तो दोस्तों, ये था इस वीकेंड हमारा और आपका साथ कुछ बेहतरीन बातों और हमारे और आपके ख्वाबों से सजा हुआ। एक और साथ पर कुछ खास बातों के साथ अगले वीकेंड आपसे जरूर मिलूंगी। सुकून भरे कुछ पल होंगे, हमारा आपका साथ होगा, नए नए एहसास होंगे और ताजगी खूबसूरती हम सब कुछ फील करेंगे। लेकिन आज के सफर से अब ये वक्त है इजाजत लेने का, विदा लेने का। तो चलिए, अपने वीकेंड्स को जरूर खास बनाते रहिए, उन्हें जीते रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए। मेरी आपसे मुलाकात होती है अगले सैटरडे, और तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीकेंड्स।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड किया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन।

से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

बदला मैं न बदला वो न बदला तू, अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कम वक्त, ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की झप्पी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी पे।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ना बदला मैं ना बदला वो ना बदला तू, अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जपी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोच कर पिछला और अगला

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

वहमों गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

रेडियो प्रसवानी 1701 AM एक बार फिर से लेकर आ गया है आपके लिए भक्ति सागर। ईश्वर के अनेक नाम हैं, लेकिन आप जिस नाम से चाहें उसे पुकारें, वो आपके अंदर अपनी श्रद्धा उसी भाव से उसी नाम से बढ़ा देते हैं। और हम भी आज एक बार फिर से ईश्वर के प्रेम का स्वाद चखने के लिए, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव दिखाने के लिए और उसकी आस्था उसकी भक्ति करने के लिए एक बार फिर से जुड़ गए हैं भक्ति सागर में रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। मैं हूं श्रोताओं सताक्षी आपके साथ, और मेरे साथ भक्ति रस में डूबे कई ऐसे अनोखे और खूबसूरत गाने हैं जो आज इस भक्ति के महत्व की महिमा भी आपको बताएंगे और आप भक्ति के रस में डूबकर इससे सराबोर भी हो जाएंगे। तो चलिए भक्ति का आनंद लेते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ भक्ति सागर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर।

लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। कहते हैं ये वचन तुलसीदास जी के अंतिम उपदेशों में से एक है, जिसमें वो कहते हैं कि लाखों बातों में से एक बात ये कह रहा हूँ जो सबसे अनमोल है, ये अनुभव की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मानव जीवन आपका सफल हो, जीवन सार्थक हो और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले, तो बस श्री राम के नाम का जाप, स्मरण और भक्ति कीजिए। भक्तजनों, सही बात है, तुलसीदास जी ने जीवन का मर्म बता दिया है। अगर आप जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप अपने इस मानव धर्म को सफल बनाना चाहते हैं, तो सब बातों को छोड़कर राम नाम का स्मरण करते रहिए। और आइए भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं आपको लेकर भक्ति सागर में, रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

भक्ति सागर सुन रहे हैं भक्तजनों, आप सताक्षी के साथ। भक्ति के इस सागर में इन भक्ति गीतों के साथ कुछ ऐसे ओतप्रोत हो रहे हैं हम, जैसे ये भक्ति गीत हमें प्रभु की ओर और करीब खींच रहे हैं। आइए भक्ति रस से डूबा एक और गीत सुनते हैं। सुनते रहिए भक्ति सागर और रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी पर सताक्षी के साथ।

रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप भक्ति सागर में। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही बेहतरीन बात अर्जुन से उस वक्त कही थी जब वो गीता का उपदेश उन्हें दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता में वो कहते हैं कि हे अर्जुन, बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये तुम्हारे अपने नहीं बुराई का साथ देने वाले हैं, इसलिए हे अर्जुन शस्त्र उठाओ, युद्ध करो, हम स्थापित करो। जी हाँ, अगर सामने अधर्मी खड़ा है तो वो चाहे जितना आपका अपना है, लेकिन अधर्मी अधर्मी ही होता है, पाप पाप ही होता है, फिर चाहे वो किसी के द्वारा भी किया गया हो। भगवान श्री कृष्ण की इसी वाणी के साथ आइए आपको आगे लेकर चलते हैं भक्ति सागर में, रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर।

रेडियो प्रसारणी पर आप सुन रहे हैं भक्ति सागर, आपके साथ सताक्षी है और भक्ति के इस पावन और आनंदमय सफर में आपके साथ आगे चल रही हूँ एक और भक्ति गीत के साथ। सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो प्रसारणी 1701 AM पर।

श्रोताओं, हम हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, लेकिन माँ सरस्वती की आराधना करना हम अक्सर भूल जाते हैं। माँ लक्ष्मी धन देने वाली हैं, लेकिन उस धन को कैसे खर्च करना है कि वो कई गुना बढ़ जाए, कहाँ लगाएं कि उसमें लगातार वृद्धि होती रहे, ये ज्ञान हमें विद्या से आता है। और विद्या की दात्री माँ सरस्वती, उनकी आराधना करने से हमारे दिमाग का विकास होता है। इसलिए सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं, माँ सरस्वती की आराधना भी कीजिए, क्योंकि माँ सरस्वती आपको धन कमाने के इतने रास्ते दिखाएंगी कि माँ लक्ष्मी आपके पास आएंगी जरूर। तो माँ लक्ष्मी में खोकर माँ सरस्वती को भूलना नहीं है, माँ सरस्वती को याद करके माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते खोलने हैं। बहुत ही सुंदर बात है, बस समझने की देर है। आइए सरस्वती वंदना के साथ आगे बढ़ते हैं। रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

मनुष्य अक्सर अपनों को पराया और परायों को अपना समझ बैठता है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने, तो समझ लीजिए आपका विनाश का समय प्रारंभ हो गया है, क्योंकि पराये आपके अपने बनकर आपको धोखा देते हैं। वो आस्तीन में पाले उस सांप की तरह होते हैं जो वक्त आने पर सबसे पहले आपको डसता है। इसलिए अगर अपनों पे भरोसा नहीं कर सकते तो परायों पे भी भरोसा मत कीजिए। सुनते रहिए भक्ति सागर सताक्षी के साथ रेडियो ब्रह्मवाणी पर।

तो भक्तजनों, ये था आज भक्ति सागर में हमारा आपके साथ, या ये कहें ईश्वर की वंदना के साथ एक और साथ। आज हम ईश्वर के दो कदम और नजदीक बढ़े। उम्मीद करते हैं कि आज आप इस भक्ति रस में खोकर आनंदित जरूर हुए होंगे। तो प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और आपको हमेशा वो धर्म की ओर और अधर्म से दूर करे। इसी मंगल कामना के साथ आज के सफर से ले रही हूँ विदा। राधे राधे।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: रेडियो 79 ब्रिजबेन पर रविवार की सुबह 7 बज चुके हैं। आप सब सुनने वालों को फिरोज खान का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हर सप्ते की तरह एक बार फिर हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सभी थोड़ी देर में सुनेंगे हजरत मौलाना फजल दाद के साथ हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम सवाल और जवाब। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद के बयान, जिसको हमने पेश किया था पिछले जुमे को, आपके लिए मैं रिपीट करूं मौलाना फजल दाद के सवाल और जवाब के से पहले। तो ये है महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान, उनका बयान हज अदुल विदा पर।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मिल्लत बिरादरान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिवायतों के मुताबिक सरकारी द्वारा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलकादा की 24 तारीख को जुमा का दिन जुमा की नमाज के खुतबे में आपने हज की फजीलत, हज की अहमियत को बयान फरमाया, और दूसरे दिन सनीचर को सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़कर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जो मदीना मुनव्वरा पहुंच चुकी थी, इनके साथ सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हज का सफर शुरू किया। अब जोहर की नमाज के बाद, सनीचर को जोहर की नमाज के बाद ये काफिला रवाना हुआ और ज़ुल्हुलैफा, जहाँ से अहराम बांधना है, ज़ुल्हुलैफा की मस्जिद में आप तशरीफ ले गए। वहाँ असर की नमाज पढ़ी, रात वहीं गुजारी, और दूसरे दिन सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतवार के दिन अहराम बांधा, और इसके बाद सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को लेकर के हज के लिए रवाना हुए। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 ज़िलहज्जा को मक्का मौजमा आप पहुंचे, आपने बेतुल्ला शरीफ का तवाफ किया, हज रसूल को इस्तेदाम के बोसा दिया और पूरा तवाफ आपने किया। मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा फरमाई, हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की तादाद बढ़ती जाती थी। रिवायतों के मुताबिक शुरू में 40,000 का अंदाजा था, लेकिन ये तादाद बढ़ते बढ़ते रिवायतों के मुताबिक मैदान अरफात में जब पहुंचे तो 1,30,000 के करीब का अंदाजा लगाया गया, अंदर 30,000 अल्लाह के बंदे हज के लिए पहुंच चुके थे कमोबेश। आपने बेतुल्ला शरीफ का तवाफ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर आपने सफा और मरवा की सही फरमाई। मैं मुख्तसर अर्ज करता हूँ, सफा और मरवा की सही के 4-7 चक्कर पूरे करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मदीना मुनव्वरा से रवाना हुआ तो कुर्बानी के जानवर को मैं साथ ले आया हूँ, इसलिए मैंने जो एहराम बाधा है वो उमरा और हज दोनों का एहराम है एक साथ। हज की 3 किस्में हैं, उलमा किराम फरमाते हज की 3 किस्में हैं, अफराद, किरान, तमत्तो। अफराद के मुताबिक फरमाया गया कि एक आदमी हज के लिए रवाना हो तो एहराम बांधे तो सिर्फ ये नियत करे कि मुझे हज अदा करना है, उमरा शामिल ना हो, ये अफराद है, अफराद इसी को कहते हैं। किरान के आदमी एहराम बांधते वक्त ये नियत कर ले कि मैं इसी एहराम के साथ उमरा भी अदा करूंगा और इसी एहराम के साथ हज भी अदा करूंगा, दोनों साथ में एक ही एहराम से।

0: क्या करना है। तमत्तो हज करने वाला एहराम बांधते वक्त नियत करे कि मैं उम्रा अदा करूंगा और उम्रा के बाद उम्रा की तमाम अरकान पूरे करने के बाद मैं अपना एहराम खोल दूंगा, सिर्फ उम्रा की नियत की। और उसके बाद जब हज के दिन आए आखिर हज्जा, तो उसने दूसरा एहराम बांधा हज के लिए। तो ये तमत्तो है। आमतौर पर सहूलत और आसानी के लिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि तमत्तो में सहूलत है, आसानी है, एहराम की पाबंदियों को पूरा करने में लोगों को सहूलत पेश आती है। मैंने इसलिए अर्ज किया कि सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा दोनों की नियत की थी। आपने फरमाया कि मैं कुर्बानी के जानवर को लेकर के आया हूं और जो हजरात भी कुर्बानी के जानवर साथ में लाए हैं वो अपने एहराम को खोले नहीं बल्कि इसी एहराम के साथ उम्रा भी अदा कर लें और हज भी अदा कर दें। और जो हजरात कुर्बानी के जानवर नहीं लाए हैं वो अपना एहराम खोल दें और उम्रा के तमाम काम को पूरा कर लें। बहरहाल ये मुख्तसर तशरीह मैंने इसलिए की कि सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की कुछ कैफियत हमारे सामने आ जाए। बहरहाल सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 तारीख को ज़िलहज्जा की 8 तारीख को मीना पहुंचे। वहां आपने ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा और फजर की नमाज अदा की और दूसरे दिन 9 तारीख को अरफात के मैदान में आप तशरीफ ले गए। हुज्जाज किराम सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने वाले हजारों लाखों मुसलमान आपके साथ अरफात के मैदान में पहुंचे। इतना जरूरी बात याद करने के बाद मैं कुरान करीम की उस आयत को जिसको मैंने शुरू में तिलावत किया है उसी के मुताबिक चंद बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता हूं। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी कसवा पश्तवाद थे और मुसलमानों को दीन की बातें पहुंचा रहे थे, अल्लाह के अहकाम सुना रहे थे। इसी दरमियान में अर्श इलाही से पैगाम इलाही और आयात रब्बानी लेकर के हजरत जिब्राइल अलैहि सलातु वसलाम के जरिए ये आयतें आपके कल्ब मुबारक में डाली गई। कल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना। इस आयत का नुजूल होना था। ये ऊंटनी जिस पर आप सवार थे वो बैठ गई और अपनी गर्दन जमीन पर फैला दी। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर पसीना आने लगा। अज़ात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि जब कभी भी कुरान करीम की आयतों का नुज़ूल होता अगर आप सवार होते तो ऊंटनी बैठ जाती, अपनी गर्दन जमीन पर झुका देती और अगर आपका सर मुबारक अपनी किसी सहाबी की रान पर होता और आप आराम करते हो इसी हालत के अंदर वही नाजिल होती तो सहाबी रसूल फरमाते हैं इस कुरान करीम की आयत के नुजूल के वक्त जो है मेरे पाओं की हड्डियां जैसे टूट रही हैं और बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था। अल्लाह का पाक कलाम है, इतनी बड़ी ताकत है। ऊंटनी बैठ जाती हैं, अपना सर झुका देती हैं। सरकारी दो आलम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम का नुजूल होता तो पसीना से आपकी पेशानी तर हो जाती। बहरहाल इस मुबारक आयत में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने खुशखबरी दी है। पैगाम इलाही आया अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आज के दिन ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन मैंने अपना दीन अपना मुकद्दस दीन आपकी जात पर मुकम्मल कर दिया, कामिल कर दिया, दीन मुकम्मल कर दिया मैंने। और जो नेमतें मुझे देनी थी, जो इनामात आपको देने थे, वो इनामात भी पूरे पूरे आपको दे दिए। और अब इस्लाम ही से मैं राजी रहूंगा। अन यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियमति व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। इस्लाम ही से मैं राजी रहूंगा। वो दीन जो इस्लाम के नाम से है, इसी पर मैं राजी रहूंगा। और जो इस इस्लाम पर चलेगा, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वो मेरी रजामंदी हासिल कर देगा। यह आयत कुरान करीम की नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई तो हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन में बड़ी खुशी फैल गई कि जिस दीन की खातिर हमने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी थी, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हमारी जिंदगी में उस दीन को मुकम्मल कर दिया। बड़ी खुशी हुई, अल्लाह का दीन हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गया। कयामत तक के लिए इस बात को बतला दिया गया ये अल्लाह का आखिरी दीन है, ये शरीयत आखिरी शरीयत है, ये पैगाम इलाही आखिरी पैगाम है। सरकारी दो आलम हजरत नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब कोई नया नबी आने वाला नहीं, नई शरीयत आने वाली नहीं, नया पैगाम इलाही आने वाला नहीं। सारे इंसानों की नजात और फलाह सिर्फ इसी में है कि अल्लाह के इस दीन पर चले, उसको अपनी जिंदगी में ले आए। हुज्जाज किराम को खुसूसियत के साथ कहा जाता है, इस मुबारक जगह पर हज्जतुल विदा में ये आयतें नाज़िल हुई, इस बात का अहद पैमान कर लें कि हम वापस जाकर के अल्लाह के दीन पर चलेंगे, इस दीन को के साथ मोहब्बत करेंगे और इसी दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ने बड़ा मुकम्मल पाक दीन अता फरमाया है, बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं। ये पैगाम है। और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया हज्जतुल विदा में, बेनजीर और बेमिसाल खुतबा है। आपने इरशाद फरमाया इसमें, देखो आज के बाद तुम पर एक दूसरे का खून हराम है, कत्लो कताल हराम है, एक दूसरे का माल लूटना हराम है, एक दूसरे की इज्जत और आबरूजी से खेलना हराम है। देखो तुम आपस में एक दूसरे की गर्दनों को मत न मारना, एक दूसरे की जिंदगी से खेलना मत। ये मुख्तसर बातें मैं अर्ज करता हूं। देखो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जो दीन मेरी जरिए भेजा है उस पर चलो। और वहीं पर आपने ये भी फरमाया, मैं इस दुनिया से जाने ही वाला हूं, अनकरीब अपने खुदा की बारगाह में पहुंचने वाला हूं। मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जाता हूं, तरक तुफी गुम अमरीन किताबुल्लाह व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जाता हूं, एक अल्लाह की पाक किताब कुरान करीम और एक मेरी सुन्नत, मेरे नूरानी अमाल। तरक तुफी गुम अमरीन किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब को छोड़ के जाता हूं, मेरी सुन्नतों को छोड़ कर जाता हूं, मेरे अमाल को छोड़ करके जाता हूं। तुम इसको मजबूती से पकड़ लो, पकड़ लोगे तो कभी गुमराह न होंगे, राह हिदायत पर चलते रहोगे। बहरहाल अल्लाह सुबहानहु व तआला ने नेमत अता फरमाई, फरमाया गया कि हज्जतुल विदा में मैदान अरफात में पहुंचने वाले कम से कम 100 मरतबा لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير पढ़े। इब्लास की तरफ रुख करके जोहर की नमाज के बाद इनको 100 मरतबा पढ़े। और 100 मरतबा قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد पढ़े। और फिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। वो दुरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ा जाता है या कोई और भी दुरूद शरीफ। और फिर दुआ मांगे, अरफात के मैदान में ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है। बड़ी बरकत वाला दिन होता है, अल्लाह ताला की रहमत पहले आसमान पर आ जाती है और बख्शिश के फैसले किए जाते हैं। और जब सरकारी दुआलम हजरत नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजा अकदस पर हाजिरी हो तो उलमा फरमाते हैं कि वहां ज्यादा से ज्यादा सरकारी दुआलम हजरत नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक पर हाजिर होकर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदुल मुरसलीन बड़ी मोहब्बत और जौक और शौक के साथ सरकारी दुआलम हजरत नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज करें। उलमा एक उम्मत ये भी फरमाते हैं कि अगर हो सके तो सरकारी दुआलम हजरत नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठ के नहायत ही खुशू और खुशू के साथ 1000 मरतबा इन्ना अतैना कल कौसर वसल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर पढ़ करके सरकारी दुआलम हजरत नबी ये करीम सलाम की मुबारक रूह को इसका सवाब पहुंचा दे तो अल्लाह के रसूल बड़े खुश होते हैं। दुआ है कि अल्लाह सुबहानहू व तआला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और वहां की बरकतें और रहमतें हम सबको नसीब फरमा दे और अल्लाह सुबहानहू व तआला अपने दीन से मोहब्बत नसीब फरमाए और इस दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमा दे। अल्लाह सुबहानहू व तआला हमारे गुनाहों कोताहियों को माफ फरमा दे। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته।
1: अभी आपने सुना महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान से एक बयान जिसको हमने पेश किया था पिछले जुमे दिन यहाँ 79 ब्रिस्बेन पर। अब चलो हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम सवाल और जवाब, ये है हजरत मौलाना फजल दार।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم محترم ومكرم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيام چل رہے ہیں ذلحجہ کے ذلحجہ کا مہینہ یہ اسلامی 12th مہینہ ہے is the 12th month of the Islamic year and there's very few days left till Eid al-Adha accordingly next Wednesday will be Eid al-Adha And the Hujjaj Ikram, those people who've gone on the special auspicious journey, jo log is barkat wale safar ke upar nikle hue hain, to ab kuch dinon tak wo Makkah se nikal kar Mina chale jayenge aur Mina se phir Arafat ke maidan se Muzdalifah ki taraf aayenge, Muzdalifah se wapas Mina, this ye pura ek circle hota hai اور پھر وہاں سے واپس مکہ حج کے جو 5 ہوتے ہیں بڑے ہی بیزی ہوتے ہیں اور اس کے اندر بڑا ہی چلنا پھرنا اور کافی تکلیف تھکاوٹ انسان کو محسوس ہوتی ہے لیکن جو لوگ ادھر ہیں اب حجاج اکرام تو تقریباً سب چلے گئے ہیں شاید ہی ایک آدھ فلائٹ جو باقی رہ گئی ہو لیکن اکثر جو ہیں جن کو اس سال حج پر جانا تھا وہ تو اب چلے گئے ہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں ان کے لیے کیا ہمیں کرنا ہے تو 2-3 چیزیں ذہن میں تھی جن کا آج ذکر کروں گا فضائل آپ روزانہ سنتے ہیں روزانہ کا مطلب جب جب موقع ملے چاہے ریڈیو کے ذریعے میڈیا کے ذریعے آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر وقت سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں مختلف سوشل میڈیا سے مسائل بھی دیکھ لیتے ہیں وہاں اور پھر جو فضائل ہیں وہ بھی سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں और कई सालों से इंसान सुनते सुनते वो तकरीबन इंसान को महफूज भी हो जाती हैं, लेकिन यह देहानी के तौर पर दोबारा उनको जिक्र किया जाता है आम तौर पर. There's very less days for Eid al-Adha, and most of the people, if not all, those people who were about to go on this special auspicious journey of Hajj, most of them have already set off on that journey. The odd one or two maybe flights that are left over. And now for those who have not attended Hajj this year, there's two very important things I'd like to draw your attention to. Eid al-Adha this year, 2026, is on May the 27th, on the Wednesday. सबसे पहले कुर्बानी जिसके फजाइल आप सुनते रहे हैं और उसके मसाइल भी अब आपको तकरीबन याद ही होंगे. द सैक्रिफाइस वी बीन रिपीटिंग द फजाइल एंड द मसाइल ओवर मेनी इयर्स, सो दैट विल बी इन योर माइंड. व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर अटेंशन वाज द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज तकबीरात तशरीक. تكبيرات التشريق وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو کہ اس نے آپ کی اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو تکبیرات تشریق ہیں اس کی دو وجہ بتلائی. Allah subhanahu wa ta'ala, in this verse, he's mentioned two very important reasons for this takbirat al-tashriq. Because normally, it comes to a person's mind, I am going to be reciting takbirat al-tashriq, but what is the reason for it? Uski wajah kya hai? Kyun hum is takbirat al-tashriq ko padhte hain? Kyunki jis kaam kabhi Allah Rabbul Izzat ne aur Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam ne hume hukum diya, uski hamesha wujuhat hoti hain, uski piche hikmatein hoti hain. To iski kya hikmat hai, iski kya wajah hai? To chunanche Allah Rabbul Izzat ne yahan do hikmatein to Quran Kareem hi ke andar batla di. Ek to ye ki tum Allah ki takbeer bayan karo, Allah ki badai bayan karo, aur dusri taaki tum Allah ki ne'maton ka shukr ada karo. Shukr ada karna ye alag kaam hai, اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ الگ بیان ہے. To recite takbir and to praise the greatness of Allah, that is one thing, and then also at the same time to be grateful for the bounties and the ni'mats of Allah, that's a separate thing altogether. اب یہ تکبیرات تشریق کیا ہیں تو دوبارہ یاد دہانی کرا دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. That's takbirat al-tashriq, and I will recite it a couple of times for those people who would like to record it or write it down or who would like to learn it. تو اس کو تکبیرات التشریق کہتے ہیں, اور یہ مسئلے کے لحاظ سے عید سے ایک دن پہلے والا جو دن ہوتا ہے جو نو ذلحجہ, کیونکہ عید کا دن یہ 10 ذلحجہ ہوتا ہے, تو ایک دن پہلے سے یہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں. These تکبیرات they begin one day before عید الاضحى. So now we have this year عید الاضحى, 27th of May 2026, it's going to be a Wednesday, so the تکبیرات will begin on the Tuesday and they will begin in the morning and they will continue for 23 salah. 23 namazon tak, 23 namazon tak ye jari rahenge. Har farz namaz ke baad kam az kam ek martaba is takbir ko kehna ye wajib hai. After every farz salah, to recite this takbir at least once is wajib upon every single person, whether they are male, female, whether they are praying at home, whether they are praying in the masjid, whether they are praying with jama'ah, whether they are praying individually. Whether that salah was ada on time, or whether that salah you had missed it and now you are performing qada of that salah. If it comes within the brackets of those 23 salah, then you will have to recite takbirat al-tashriq at least once. Of course, ladies, you will have to recite it quietly, and males, you recite it slightly loud. But every one of us will recite it. And if you forget, then the moment you realize that I have forgotten takbirat al-tashriq, you recite it straight away. Jab bhi aapko yaad aaye, agar bilfaraz bhool gaya ho kisi namaz ki baat, kyunki insaan aam dastoor yahi hota hai ki namaz padh ke uske baad agar dua karni hai, dua karke uske baad uthkar chala jata hai, to jab insaan 11 mahine is tarah karte to usko aadat ban jati hai ki jo hi salam pher kar fir dua karke fir uske baad uth jate hain, chale jate hain. To ab agar bhool gaya kisi wajah se ye shakhs, if this person forgets for any reason, to jis waqt bhi yaad aaye us waqt insaan un takbirat tashreeq ko padh le. Aur jo hi farz, to ab ye 23 namaz kis tarah hongi, Tuesday ke din jo 5 namaz hai subah ki namaz ke farayz ke baad, Tuesday ki zuhr, Tuesday ki asr, Tuesday ki maghrib, Tuesday ki jo isha hai, to ye Tuesday ke din ki 5 namazein ho gayi, Wednesday ke din ki 5 namazein ho gayi, Thursday ke din ki 5 namazein ho gayi, Friday ke din ki 5 namazein ho gayi, aur fir Saturday ke din ki 3 namazein, fajar, zuhr, asr. Is ke andar, asr ke andar bhi aap, asr ke baad bhi of course aap takbirat tashreeq padhenge, lekin maghrib ke andar nahi padhenge, wo aapki 24vi namaz ho jayegi. To 23 namaz, 23 up to 23 salah, you will be reciting these takbirat al-tashriq. And again, like I mentioned, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Aur ye yaad rahe, and I wanted to mention as a point of importance that although it's wajib to recite these after Farz Salah, you can recite them as many times during the day or night, whenever you want, whether after Salah, before Salah, during the day, laying down, standing up. In these days of Ayyam-e Tashriq, these days of Tashriq, because on the day of the 9th is the day of Arafah. Arafah is the most important day in Hajj. Arafah jo hai, Hajj ke ayyam mein sabse muhtam bisham aur sabse aham tareen din hai. To us din se ye shuru karte hain, fir dusre din Eid hai, aur fir Eid ke 3 din baad tak ye ayyam-e-tashreeq inko kaha jata hai. To in dino ke andar insaan din mein, raat mein, jab bhi aapko mauka mile, aap inki tilawat karte rahe, inko padhte rahe. Whenever you get a chance, you are to keep reciting these takbirat al-tashriq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Aur iske andar aap Allah ki takbir bayan kar rahe hain, Allah ki badai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر دوبارہ, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. وللہ الحمد, اور تمام تعریفیں, تمام تعریفیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں. All the praise of every sense, every notion, every place, every kind of praise, it is ultimately for Allah. Allah hi ke liye tamam ke tamam hamd hai, tamam ke tamam tarife Allah hi ke liye hai. To iske andar Allah ki tarif hi tarif, aur Allah ki hamd hi hamd, aur jab insaan Allah ki hamd karta hai, to ek kisam ka Allah ka shukr bhi ada kar raha hai. Allah has granted us so much We cannot even count the ni'mas of Allah. Allah ki ni'maton ko hum gin nahi sakte. Allah ki ni'maton ko hum gin nahi sakte. Lekin kam az kam is andaaz ke andar hum thoda sa shukr to ada kar le. Uske shukr ka ada karne ka haq hum ada nahi kar sakte. The amount of gratefulness that we should be, we can't reach that level at all. The amount of gratefulness that we should be, how grateful we are, and we are doing shukr of Allah, giving thanks to Allah, the amount of thanks that we should be giving to Allah for His favors, we can never, never, never be able to give the full due. Pura haq ada, hum kisi surat ke andar, Allah ke nematon ka haq ada nahi kar sakte. Lekin, kam az kam itna kar sakte hain, ke jab jab Allah hame, ya Allah ke Rasool sallallahu alaihi wasallam hame batlate hain ki ab tumhe takbeer karni hai ya tahmeed karni hai ya Allah ka shukr karna hai ya Allah ki hamd bayan karna hai to us waqt agar hum kare to ye bhi ek kisam ka shukr hi hai aur baki Allah ko pata hai ki meri makhlooq jo hai wo mera pura shukr ada nahi kar sakti ye usko khaliq ko pata hai he knows that the ni'mas that he has given far, far, far outweigh the amount of shukr that we can even contemplate. Hum itna soch bhi nahi sakte ki itna shukr ada kare. To isliye ye yaad rahe aur agar aap program sun rahe hain aap tak ye ilm hai to apne family members apne dosto ahbab apne neighbors un tak ye masla zarur pahuncha le. Make sure we try and take this message over to those people who may not have heard about this mas'ala, who may have forgotten about it. It may slip their mind. That takbirat tashriq, they begin one day before Eid, ek din, Eid se pehle, aur har faraz namaz ke baad kam az kam ek martaba usko padhna ye wajib hai. To ye raha ek mas'ala. Dusra masala jis ki taraf aapki tawajjuh dilani thi, the second masala that I wanted to bring your attention to was the fasting on the day of Arafah. Arafah wala din, yani jis din hajj hoga, to hajj se ek din pehle wala din, usse pehle, the day prior to Eid al-Adha, it's the day of Arafah, the 9th al-Hijjah, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he would say, أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. That I have yakin that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive the previous year's sins and the past year's sins. So that's why we should try and keep the day of Arafah as well, because it is an erasure of our sins. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہی ترغیب دی ہے اس روزے کی بڑی ہی ترغیب دی ہے تو I really would recommend کہ جتنے سے ہو سکے اور especially اس سال چونکہ بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں اگلے ہفتے next week it's going to be holidays from school so many of you will have a chance to have an extra lie-in in the morning and you don't need to really wake up very early and I understand the days are slightly longer because of the summer months May ke andar din jo hai wo kafi lambe hona shuru ho jate hain aur aaj kal maghrib ki jo namaz hai taqriban 9:25 tak 9:30 tak pahunch jati hai lekin ek hi to din hai aur agar us din ke andar agar thodi si bhook lag bhi gayi thodi si pyaas lag bhi gayi thodi si takleef ho bhi gayi to kya hua دوسرے دن عید کے دن ہے آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے اور دوسری بات کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ رہے ہیں تو اگر تھوڑی سی تکلیف ہو بھی گئی تو یہ دیکھو کہ اس کا اجر اللہ رب العزت آپ کو اس کے اوپر کتنا دینے والی ہے Think about the اجر that Allah سبحانہ وتعالی is going to grant you upon this سوم عرفہ Allah subhanahu wa ta'ala the amount of ajr he is going to give, the amount of ajr Allah subhanahu wa ta'ala is going to grant us. Now, aam taur par poocha jata hai ke sehri aur iftari Ramadan mein to timetable hota hai, to isme kya, to isme aasan baat ye hai ke aap dekh lein ke fajar ka waqt aapke local jo timetable hai, of course fajar ka waqt kis waqt shuru hota hai aur us waqt ke shuru hone se 5-10 minute pehle aap apni sehri khatam kar lein. So this is sehri ka usool. The rule for sehri is you have your local masjid salah timetables and you look at the time when fajr begins. So the time fajr begins, give it 10 minutes previous to that, and that's when your sehri, just to be on the cautious side. 10 minutes before that, your iftari your sehri completes, you don't eat after that, and then of course your iftari will be with Maghrib Azan. Maghrib ki azan ke sath aap apni iftari kar lenge jab Maghrib ki azan ho, Maghrib ka jo waqt ho, to ye to bada hi asan hai. To isliye main arz kar raha tha, and I was mentioning that Allah subhanahu, this is one of those special days that Allah subhanahu wa ta'ala has attached a very, very special reward, because usually in all the other rewards, the hadith or the Quran will tell us that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your previous sins. Aapke jo pehle ke gunah hain, Allah rabbul izzat un tamam ko maaf kar dete hain. Lekin Arafah ke din ke bare mein farmaye pichle saal ke bhi gunah maaf karenge aur agle saal ke bhi gunah Allah rabbul izzat maaf farmayenge. Matlab itna bada sawab hai, it's such virtuous that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your previous year's sins and also the forthcoming year's sins, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. To ye bada hi sawab hai aur is qisam ka sawab bahut hi kam ibadaton ke sath aata hai. To isliye I really would recommend, main zarur aapko darkhas karunga aur tajweez dunga ki agar ho sake to Tuesday wale din, Tuesday, the 26th of May, 26th of May 2026. Aap ye din jo hai, roza rakhe. Sunnat wala roza rakhe. Aur iske andar bada hi ajr hai. Khud bhi rakhe. Aur apne gharane walon ko bhi, ghar walon ko bhi, gharane walon ko bhi, sab ko roza rakhne ki targhib dein. حدیث میں آتا ہے اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ, جو شخص کسی نیکی کی رہنمائی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس نیکی کا پورا اجر دیتے ہیں. آپ نے کسی کو اس روزے کے بارے میں بتلائے کہ آپ بھائی روزہ رکھنا آپ کو ثواب ملے گا, تو اس شخص نے اگر روزہ رکھا تو اس شخص کو تو پورا ثواب ملے گا, لیکن چونکہ آپ نے اس کی رہنمائی کی تھی, اللہ رب العزت اس کی پورے روزے کا ثواب آپ کو بھی دیں گے. اگر آپ نے 10 آدمیوں کو کہا تو 10 آدمیوں کو اپنا روزہ رکھنے پر ان کو ثواب ملے گا ہی ملے گا, لیکن آپ نے چونکہ ان کو بتلایا, اللہ رب العزت آپ کو بھی 10 آدمیوں کا ثواب دیں گے. تو اس لیے اپنے کم از کم جو گھر والے ہیں, گھرانے والے ہیں, your family, your associates, your colleagues, your friends, encourage them that on the day of Arafah to keep a fast is very, very virtuous. Let's see if you can keep it. And I was mentioning in Urdu that in the hadith, the Prophet sallallahu alayhi wasallam explains to us that when you direct somebody towards a good deed and they were to act upon this, they will get that reward by act upon it. They will get that reward by acting upon it. But because you directed them, you guided them, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you the reward of that full ajr as well, of the full reward of that fast. And imagine you directed 10 people and 10 of those acting upon this. Those 10 people, they will get their own reward and ajr, but Allah subhanahu wa ta'ala will grant you the ajr of those 10 people's fasts as well. And that goes for any good deeds. And what an easy bargain. This way, you can keep your own fast, but you can get the sawab of the fasts of many other people. To come as come, اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ خود بھی روزہ رکھیں on Tuesday the 26th of May 2026, that's next week. You can keep a fast yourself, but also encourage others. تاکہ آپ کو اپنا بھی ثواب ملے اور ان کا بھی ثواب ملے. ایسے کرتے ہیں, بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں.
1: You are listening to عالم on air, حضرت مولانا فضل دار. عالم on air broadcast live on Sunrise Radio Bradford every Friday evenings from 8 PM to 9 PM. تو چلو ایک بار پھر, یہ ہے عالم on air, حضرت مولانا فضل.
2: جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان مولانا فضل داد. بریک سے پہلے دو اہم موضوع, ٹو امپورٹنٹ پوائنٹس آئی واز برنگنگ یور اٹینشن ٹو. دا فرسٹ ون واز دا تکبیرات التشریق, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک تو یہ, اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ 23 نمازوں تک ہوتا ہے. It continues for 23 salah beginning from the day prior to Eid al-Adha. Eid al-Adha سے پہلے والا جو دن ہے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے, اور فجر کی نماز سے ہر فرض کی نماز کے بعد مرد ہوں یا عورتیں ہوں ایک مرتبہ کم از کم اس کو پڑھنا ہوتا ہے. You have to recite it at least once after every farz salah. But having said that, you can recite it throughout the day as many times as possible. And the second point I drew your attention to, دوسرا اہم موضوع جس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا, وہ ہے روزہ یوم عرفہ کا, عرفہ والے دن کا روزہ. And I explained that Allah subhanahu wa ta'ala has attached a very very special reward with this. اس کے ساتھ بہت ہی خاص ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے, اور وہ کہ اللہ رب العزت پچھلے سال کے بھی گناہ معاف کریں گے اور اگلے سال کے بھی گناہ اللہ رب العزت معاف کریں گے اس روزے کے رکھنے کے ساتھ. اب تیسری چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ ہے کہ عید کے دن قربانی کے بارے میں چند مسائل بہت ہی اہم ضروری ہیں. There are some very important things that I wanted to draw your attention to. And the first one is, over the last couple of years, I've seen a huge misunderstanding amongst the people. And I don't understand where this misunderstanding has actually crept into. And had I not had personal experience of people asking me these questions, I would have half believed it. یہ جو غلط فہمی بہت سارے لوگوں کو پچھلے چند سالوں سے ہوئی ہے, تو خود چونکہ انہوں نے مجھ سے بار بار مختلف لوگوں نے سوال کیے تو مجھے خود اس کا تجربہ ہوا, ورنہ مارنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس طرح کا بھی سوچ سکتے ہیں. سووں سال سے قربانی ہو رہی ہے, اور وہ یہ کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ قربانی جب فرض ہوتی ہے تو ہر شخص کی طرف سے ایک قربانی. When qurbani is obligatory upon you, then it will be one sacrifice per person. So the father sacrifices one, mother sacrifices one, the son, the daughter, the uncle, auntie, everyone has an individual part, individual sacrifice. Recently, the misunderstanding that's beginning to crop up is that people are thinking that there's one sacrifice on behalf of a family, and that's incorrect. That is totally incorrect. It is not a sacrifice on behalf of a family. It is, in actual fact, a sacrifice on behalf of each individual upon whom the sacrifice is wajib. So that's the first thing that we really, really need to understand and begin to remind the youngsters. And I think this is cropping amongst the youngsters generally, because the elderly, they've been performing their qurbani for many, many, many years, so they are well versed in its rules and regulations. جو ہمارے بڑے ہیں ان کو تو یہ مسائل अजबर याद है क्योंकि सालों साल ये कुर्बानी करते रहे, उसके अहकाम सीखते रहे, पक्के होते रहे, याद करते रहे, लेकिन यंगस्टरों के अंदर ये गलत फहमी थी। वो ये समझ रहे थे कि पूरे घराने की तरफ से एक, हालांकि ये गलत है, बल्कि फी एक आदमी की तरफ से एक कुर्बानी। तो अगर वालिद हैं उनकी तरफ से अलग कुर्बानी, वालदा है उनकी तरफ से अलग कुर्बानी, बेटा है बेटी है उनकी तरफ से अलग, उनकी तरफ से अलग, हर एक की अपनी अपनी कुर्बानी होती है। इस तरह नहीं कि एक कुर्बानी तमाम फैमिली की तरफ से हो, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। तो सबसे पहला मसला आपके सामने ये पेश करना था, नंबर एक। दूसरा मसला ये है कि कुर्बानी आपकी ईद की नमाज के बाद होनी चाहिए। The qurbani that you are performing, it must be after your Eid Salah. It should not be before your Eid Salah. So if you are praying Eid Salah, let's say at 9 o'clock, agar aap Eid ki namaz 9 baje pad rahe hain, to 8 baje aapki qurbani agar hui to wo qurbani nahi hogi. अगर 6 बजे हुई तो कुर्बानी नहीं होगी। रात को 2 बजे से पहले, ईद से पहले जो भी कुर्बानी हुई वो आपकी तरफ से अदा नहीं होगी, बल्कि आपकी ईद की नमाज के बाद आपकी कुर्बानी होनी चाहिए। योर कुर्बानी मस्ट बी आफ्टर योर ईद सलाह। अब यहां इस मर्तबा एक अजीब मसला पैदा हो गया जो कई सालों से इस तरह होता है, लेकिन इस मर्तबा ज्यादा। और वो ये कि अगर दूसरे ममालिक के अंदर भी उसी दिन ईद कर रहे हैं कि जिस दिन आप भी कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल, अ लॉट ऑफ पीपल दे सेंड देयर सैक्रिफाइसेस टू पाकिस्तान, टू इंडिया, टू बांग्लादेश एक्सेट्रा, एंड सिंस ईद इन यूरोप, इन इंग्लैंड एंड आल्सो इन पाकिस्तान, इन इंडिया, दीज प्लेसेस इज गोइंग टू बी ऑन द सेम डे, and we have a 5-hour or 4-hour difference in timings due to time zones across the world. Times ki wajah se Pakistan, Hindustan, ye jo malik hain, inka time difference hai. To for example, Pakistan ka in dinon ke andar 5 ghante ka faasla hai. Now in May we have a 5-hour difference. So whereas if it's 12 o'clock in the afternoon here, it will be 5 o'clock in the afternoon over there. To lihaza, jis wakat Pakistan ke andar agar wo qurbani kar rahe hain 9 baje ya 10 baje, kyunki unke liye to takriban dopahar hone ki aayi hai, unhone apne 8 baje Eid ki namaz ada kar li Pakistan ke andar, for example, wo to ek misal de raha hu, unhone 8 baje Eid ki namaz pad li और 10 बजे अगर वो कुर्बानी कर रहे हैं तो उनके लिए तो वो जायज है क्योंकि उन्होंने अपनी ईद अदा कर ली। लेकिन अगर वो आपकी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो वहां 10 बजे यहां 5 बज रहे हैं, 5 घंटे का फर्क है। इट विल बी 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड बिकॉज इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग यू हैवंट इवन प्रेड योर ईद सलाह, आपने ईद की नमाज नहीं पढ़ी, और चूंकि ईद नमाज नहीं पढ़ी इसलिए आपकी वो कुर्बानी ना हुई। तो चूंकि इसके अंदर मसाइल है, दैट्स व्हाई इफ यू आर गिविंग इट अब्रॉड देन टू बी ऑन द कॉशियस साइड, एहतियात का तकाजा ये है कि आप उनको कहें कि हमारी जो है आफ्टरनून के अंदर कुर्बानी कर लें या दूसरे दिन कर लें। ऐसे करते हैं, कुछ साथी कॉल के ऊपर आए हुए हैं तो उनकी कॉल भी ले लेते हैं और फिर वापस इन मसाइल की तरफ आएंगे। जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you, Mullah Sahib? Okay.
2: Alhamdulillah. Allah ka shukr. And how are you?
3: I'm good, thank you. I just got a small question and it's on Qurbani.
2: Ji, what's your name, bhai?
3: Hussein.
2: Hussein, bhai. Okay, okay.
3: So the question is, I know you, Masha, you're talking about what people have been assuming and things, see things with very knowledgeable. My question is, and you see this on YouTube and particularly this happened in the subcontinent when they actually given the qurbani of a camel.
2: Okay,
3: so as per my understanding is the animal cannot be in any form or way damaged prior to the takbir on the animal itself before you'd slaughter the animal. Yeah,
2: true, very true.
3: So what I've seen and what which happens in particular in the subcontinent, maybe happens across the world, but when they actually perform the qurbani of a camel, they have the animal standing up with his one foot tied up, yeah? So the person who's do the slaughter of the animal, he goes and taps, looks at the nerve of the camel, and he slits the camel where the it weakens the camel, and the camel eventually drops on the floor. Mm-hmm. Then they decide to go do the slaughter of do the takbir on the camel's neck. Now, is that jais or is that not jais? And I've heard from various sources that the reason why they do that because they reckon that they can't put the camel to the floor prior to doing the takbir on its neck.
2: Mm-hmm.
3: But it doesn't make no sense where they've actually technically damaged. But you do actually see people performing qurbani of camels, but they've actually tied them down properly and performed it. But then in certain cases where they slaughter the animal, where they tap, you may have actually seen it as well, to be fair, Molaza, where they tap. They've gone and tapped. They've got one foot of it tied up, and they slit it, and that pours out a lot of blood like a fountain. So, is that qurbani actually done of the animal or not?
2: Take inshallah. Good question, and inshallah, I'll try and be very careful how we say it, because remember, there's youngsters, all kind of people listening. Some people, they're not very into gory details, whatever. But inshallah, I'll try and answer the question.
3: Thank you.
2: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye the Bhai Hussain, and a very good question, Hussain. I don't know how young you are. If you are very young, I can call you beta. If you are slightly older, your Bhai would all the same. A good question, and I'll repeat that in Urdu for the benefit of those who may not understand English as well. Ke unhone sawal kiya ke jo bade janwar ki unhone misal di ek oont ki aur oont اون کی قربانی ہوتی ہے اکثر ممالک کے اندر ہوتی ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر بنگلہ دیش کے اندر افریقہ کے ملکوں کے اندر بلکہ گلف والے مڈل ایسٹ کے ملکوں کے اندر اور جب ہم حج پر جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ منا کے اندر جب قربانی ہوتی ہے تو وہاں اونٹوں کے بھی قربانی ہوتی ہے تو بالکل کر سکتے ہیں اور ایک اونٹ جو ہے وہ سات حصوں کی جگہ پر ہوتا ہے is equal to seven parts. So yes, a camel can be sacrificed. And aur ye batla rahe the ki aam jaise ki masla hai, it's a masala that any animal that you are giving for the sake of Allah, sacrificing it, it has to be well, it has to be healthy, it has to have no deficiency in itself, health-wise or otherwise. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے حتیٰ کہ اگر اس کے سینگ بھی ٹوٹی ہوئے ہیں تو یہ بھی کمی بیشی ہے کیونکہ آپ اس کو اللہ کے واسطے پیش کر رہے ہیں اس جانور کو تو صحیح سالم ہو کسی قسم کی اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اور یہ چاہے چھوٹے جانور ہوں بکریاں ہوں بھیڑ ہوں گائے ہو بیل ہو بینس ہو اونٹ ہو تمام جانوروں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ صحیح سالم ہو in all the animals regardless of whether they are small animals like the goat and the sheep or whether they are large animals like the camel in all the animals they have to be perfectly fine health wise and also physically perfect as well کیونکہ آپ اس کو اللہ کے واسطے اب سوال انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں تو کچھ لوگ تو اونٹ کو بٹھا کر اس کے جو پاؤں ہیں وہ باندھ کر اس کو کر دیتے ہیں اور وہاں قربانی بہترین انداز کے اندر ہوتی ہے اور اس کے گردن کے اوپر جو چھری چلاتے کر اور پھر خون بہایا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اونٹ ابھی کھڑا کھڑا ہوتا ہے اونٹ کھڑا کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت اس کو یعنی کٹ کی جاتی ہے اور پھر وہ تھوڑا سا کمزور ہو کر جب بیٹھتے ہیں تو پھر باقی اس کی قربانی کی جاتی ہے تو بھائی دونوں طریقے both of them are allowed, are jais اس کی وجہ یہ ہے کہ when the first cut is happening you're actually starting your qurbani of course the most important thing is being humane اسلام میں The welfare of the animal is very, very important. ताकि जानवर को तकलीफ न हो या कम से कम मिनिमम तकलीफ हो. That is something that is emphasized to a great extent from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that we notice in Islam that you must give the animal minimum pain. In fact, if avoidable, no pain at all. But we can't say it's not going to have no pain because you are going to sacrifice it. So we say the minimum pain as much as possible, whether it's mental or physical. And that's why it's mentioned that you should not sacrifice one animal in front of another, because when it sees it, it might feel for that moment that, is it me next? So you're not even supposed to sacrifice one animal in front of another. That's how deep Islam is regarding the welfare of animals. So having said that, a person must choose the strategy and the method which is the least painful and the one that is quickest, which will take it to the result of it being sacrificed. I hope that sort of answers your question. Aise karte hain, ek aur call aur le lete hain. There's quite a few calls, and then we'll come back to this mozu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. भाई, क्या हाल है आपका? ठीक हो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है.
4: आपको एडवांस ईद मुबारक.
2: खैर मुबारक हो.
4: मेरा क्वेश्चन ना रोजे के बारे में है. मैं कुछ साल पहले हज पे गई थी, तो हमारे वो सेशन होते हैं जो पहले, तो मैं उधर गई थी ब्रैडफर्डी.
2: ठीक.
4: तो उनसे मैंने रोजे का कहा था, तो वो कहते हैं कि रोजा नहीं रखना चाहिए.
2: ठीक.
4: तो अभी आप बता रहे थे, मैं सारी उम्र मैं भी रोजे रखती रही हूँ. जब से मैंने होश संभाला है, तब से हमने घर में भी देखा सब कुछ है. तो उन्होंने मना कर दिया था कि रोजा नहीं रखना होता. तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्यों मना किया था.
2: ठीक है, अच्छा सवाल.
4: मैंने उसके बाद रोजा रखती रही हूँ.
2: ठीक है जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और इंशाल्लाह जरूर सवाल का जवाब देंगे इंशाल्लाह.
4: थैंक यू वेरी मच.
2: वेलकम.
4: ओके, अल्लाह
2: हाफिज. इन्होंने सवाल किया कि अराफा के दिन रोजा रखा जाता है, और फरमाती हैं ये आंटी के कई सालों से मैं खुद भी रखती रही, लेकिन एक मरतबा हज का कोई ट्रेनिंग थी, सेमिनार था, तो वहां उन्होंने बताया कि आप रोजा ना रखो अराफा के दिन. तो वो भी अपनी जगह पर ठीक है. वो असल में जो ममानत है वो उस वक्त है कि अब अगर आप हज के मौके के ऊपर हैं, हज के ऊपर हैं, उस वक्त वहां न रखो, क्योंकि वहां हज के बाकी जितने भी चीजें हैं, अरफात के अंदर जाना और सुबह मीना के अंदर आप होंगे वगैरह, तो वहां बड़ा चलना होता है और वहां बहुत सारे आमाल होते हैं. तो अगर आपने रोजा रखा तो रोजे की कमजोरी की वजह से ऐसा न हो कि आपके हज के ऊपर असर न पड़ जाए. तो यहां रोजा रखना तो सुन्नत है, लेकिन अराफात के मैदान तक पहुंचना और वहां वकूफ करना ये वाजिब और फर्ज है. तो ऐसा ना हो कि एक सुन्नत की वजह से आपके फर्ज के अंदर कोई कमी बेशी ना आ जाए. तो इसलिए जो लोग हज पर हैं उनसे ये कहा जाता है कि हज के दौरान आप अराफा का रोजा न रखो. बट दोज हु आर नॉट ऑन हज, जो हज पर नहीं है, उनसे यही दरख्वास्त की जाती है कि आप अरफा का रोजा रखें. आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद. मैं हूं आपका मेजबान मौलाना फजलदाद, और ये है सनराइज रेडियो 103.2 एफएम. ब्रेक से पहले एक सवाल हुआ था, और उसके अंदर ये था कि जो ऊंट होता है, जब उसकी कुर्बानी की जाती है तो लोग उसके कुर्बानी के दौरान दो मरतबा उसकी कटाई वगैरह करते हैं. तो कुर्बानी से पहले उसके अंदर किसी किस्म की कमजोरी नहीं थी, इसलिए उसकी इजाजत है. दैट्स व्हाई इट्स अलाउड, बिकॉज देयर वाज नो डेफिशिएंसी प्रायर टू द कुर्बानी. बट हैविंग सेड दैट, अगेन आई वांट टू एम्फसाइज दिस पॉइंट दैट इस्लाम प्लेसेस अ ह्यूज एम्फसिस अपॉन द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, ताकि कुर्बानी के दौरान और वैसे भी जो हमारे जानवर ज़बह होते हैं उसका लुक आफ्टर किया हो, और कुर्बानी जब हो तो जल्द अज जल्द उसको कुर्बान किया जाए, सो दैट व्हेन इट्स टाइम फॉर सैक्रिफाइस यू सैक्रिफाइस इट वेरी क्विकली एंड डू नॉट टेक टू मच टाइम, सो दैट देयर इज मिनिमल पेन इनसाइड देयर. इसी के साथ आज के इस सेशन को खत्म करता हूं. दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के अराफा के रोजे को कबूल फरमावे. ईद के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको हम सबको खुशियां नसीब फरमावे. इसी के साथ वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु.
1: अगले बार तक के लिए फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि.

कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेदवाणी।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

0: 1-800-279-2506।
1: आप सभी का स्वागत है रेडियो मेजबानी पर दोस्तों, और प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और अभी सुबह सुबह आप कुछ धार्मिक प्रोग्राम सुनते आए हैं, और अब यहाँ से एक घंटा का प्रोग्राम मेरे साथ, और फिर इसके बाद आप संगीत की झनकार टीम के साथ हो जाएंगे। अफसोस की बात है कि आज रोय सिंह और सूर के साथ आप कार्यक्रम नहीं सुन पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा यहाँ पर कुछ मुझे मेंटेनेंस करना है। और फिर लेकिन होपफुली 5 बजे से आप शशि झोकन के साथ प्रोग्राम को सुन सकेंगे, ठीक है? तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिएगा। चलिए, आज का जो मौसम है, मौसम के लिए कहा गया है कि कुछ इधर उधर वहाँ यहाँ वहाँ कुछ बारिश होने की संभावना है, और 16 and 25 रहेगा। कल के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर 17 रहेगा, मैक्सिमम 24 रहेगा, और शावा 2 कहा गया है। और मंगलवार के लिए शावा 2 17 and 25, वेंसडे को शावर्स 18 and 24 कहा गया है, थर्सडे को भी शावर्स 17 and 24, फ्राइडे को पार्टली क्लाउडी रहेगा 13 and 22, और सैटरडे को नो रेन, मौसम साफ रहेगा। तो ये रहा हमारा वेदर। नंबर है 04300031701, या स्टूडियो में आप कॉल कर सकते हैं 3279-1701 पर। तो चले, जैसे मैंने कहा, एक ही घंटा का प्रोग्राम है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम। और रबी शैगुल के साथ आप सुनेंगे दोस्तों, तेरे बिन।

और चलते हैं दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और चलिए एक छोटा सा क्विज आपके लिए, जो गाना मैं बजाने जा रहा हूँ, ये एक 1981 के एक सुपरहिट फिल्म था दोस्तों। फिल्म का रोमांटिक ड्यूट है और किशोर कुमार और लता मंगेश इन दोनों की आवाज़ों में है। और सवाल है आपसे, क्या यही प्यार है जो गीत है, ठीक है, बताइए फिल्म का नाम क्या है। टेल मी इफ यू कैन टेल मी क्यों किस फिल्म का नाम से लिया गया है, ठीक है, किस फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार, आर डी बर्मन के संगीत पर आप सुनेंगे दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, क्या यही प्यार है? दिन तेरे बिन गुजरता नहीं, दिल लगता नहीं तेरे बिन। जी हाँ, कुछ ऐसी लाइन था इसमें दोस्तों। और किशोर कुमार लता जी से इस गीत को आपने सुना, सॉन्ग इसको पिक्चराइज किया गया था संजय दत्त और टीना मुनीम के लिए। थैंक यू विनी। और मूवी रॉकी 1981 मूवी का गीत रॉकी से इस गीत को लिया गया था दोस्तों। चलिए आगे लता मंगेशकर और अदनान सामी खान से आप सुनेंगे, क्या यही प्यार है? यानी कि नहीं, शायद यही तो प्यार है। आज हम सिर्फ प्यार की बात करते हैं, क्या बात है, सब गीत में तो प्यार ही है दोस्तों।

और देखिए दोस्तों, चलिए ये एंड हो गया बड़ा जल्द। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला जो गीत है, ये जो गीत है श्रेया घोषाल, और साथ दिया है इसमें उस्ताद सुल्तान, जी हाँ सुल्तान खान, और वो आई लव हिज वॉइस टू। अब वो शायद हमारे साथ नहीं रहे जहाँ तक मैं जानता हूँ, पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन ये जो गीत है बहुत ही प्यारा गीत है दोस्तों, और एज फार एज आई अंडरस्टैंड ये शायद एक नॉन फिल्मी गीत है। आप बताइए क्या सही या नहीं?

और देखिए दोस्तों, समय बहुत बहुत ज़ोर से भाग रहा है। आप जानते हैं एक ही घंटा का प्रोग्राम है, फिर इसके बाद में आप संगीत की झनकार जो टीम है उनके साथ हो जाएंगे, फिरोज भाई के साथ, ठीक है। तो कार्यक्रम सुनते रहिए, बातें कम। लेकिन चलो, जो अगला गीत है इसका कैसे बयान करूँ मैं, कह रहे हैं कि मेरे दिन में बहुत सी ख्वाहिशें और अरमान हैं, लेकिन मैं उन्हें लफ्ज़ों में तुमसे कैसे बयान करूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसे हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन यू डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स? शायद अब डरते हैं कि कहीं इसका कोई गलत मीनिंग ना ले ले।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

सोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੂੰ ਕੱਲ ਸੁਬਹ ਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਕੱਲਾ ਲੈ ਕਰ ਆਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤਾ ਇੱਕ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਕੇ ਲਈ ਆਊਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਲੋਕ ਤੋ ਸਾਥ ਰਹੇਂਗੇ ਹਮਾਰੇ। ਖੈਰ और चलिए अगला जो गीत है फिल्म दबंग का गीत है, सोनू निगम और श्रेया घोषाल दोनों ने बहुत क्या बताऊँ बहुत प्यार से गाया है इस गीत को और म्यूज़िक को दिया है साजिद वाजिद ने सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा के लिए। और कौन सा गीत है दोस्तों आपको पता चल गया, चोरी किया रे जिया।

और जैसे मैंने पहले कहा था दोस्तों, अफसोस है कि आज दो प्रोग्राम आप नहीं सुन पाएंगे। रोहित सिंह और सू का जो प्रोग्राम है, हम कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए कुछ हमारा यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है इसीलिए। खैर चलो, अगर मैं आपसे पूछूं, लेकिन इसके बाद आपको बता दूं, ये कार्यक्रम जो संगीत के झनकार आप सुनेंगे, और होपफुली 5 बजे से सब कुछ ठीक हो जाएगा और शशि झोकन के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम। आई एम ऑलमोस्ट 90% सर्टेन इट विल बी डन। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, ओ अनजान मुसाफिर, अगर कहीं हो कभी मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के इंतज़ार में हूँ। पता बताइए कौन सा गीत है? लेकिन चलो, समय बहुत कम है। ए अजनबी, तू भी कभी आवाज दे कहीं से।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म दिल से इस गीत को आपने सुना, उदित नारायण और महालक्ष्मी इन दोनों की आवाजों में बहुत ही प्यारा गीत अभी आपने सुना दोस्तों। समय बहुत कम है, बस 10 मिनट बचा है और इसके बाद में फिरोज भाई के साथ आप हो जाएंगे और कार्यक्रम जरूर सुनिएगा दोस्तों। और अगला जो है एक गजल है, मेरे ख्याल से भूपेंद्र सिंह ने गाया है और ये एल्बम शबनम से लिया गया है दोस्तों, और भूपेंद्र सिंह की जो म्यूजिक जी, उन्होंने ही म्यूजिक दिया है और गीत का बोल है आहट से, जी हाँ, आहट से कोई आ जाए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो।

थैंक यू, आप लोग ने फिल्म शो बहुत एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब यहाँ से जाने का वक्त हुआ है और आपको बता दूं कि इसके बाद फिरोज भाई आपके साथ हो जाएंगे, तो आप जरूर सुनिएगा। चलिए अगला जो आखिरी नगमा है, एक जंगल की कहानी, फिल्म का नाम भी है जंगल में मंगल। एक जंगल की कहानी जहाँ प्यार और शरारत दोनों साथ चलते हैं, ठीक है। और एक गीत कहता है तुम कितनी खूबसूरत हो, और आप लोग सब बहुत खूबसूरत हो दोस्तों। हैव अ लवली वीकेंड, एंजॉय द वीकेंड, प्लीज कीप सेफ, कल सुबह मैं मिलूंगा।

0: आपने बना लिया है गहरा संबंध सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनका।
1: दिलों को झंकृत करें,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
1: रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। यह है संगीत की जानकार, मैं हूँ आपके साथ फिरोज खान। साथ देने के लिए और इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वादे के मुताबिक हर सप्ते की तरह रविवार के सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक आपका दिलचाहा कार्यक्रम संगीत की जानकार स्टेशन 71 ब्रिस्बेन पर। आप जैसे जानते हैं संगीत के जानकार में हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत 50, 60 और 70 से निकाली हुई ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है। जी हाँ, आपको सफर कराते हैं यादों के साथ, यानी कि डाउन मेमोरी लेन, यादों का सफर। और थोड़ी देर तक हम खामोशी से इस बैकग्राउंड म्यूजिक को सुने।

जी हाँ, आपको याद होगा द डांसिंग सीक्वेंस ऑफ शम्मी कपूर एंड आशा भोसले इन दैट फिल्म दिल तक देखो, म्यूजिक बाय उषा खन्ना। जी हाँ, टू सेट द मूड फॉर आवर यादों का सफर, हम आपके लिए पेश करेंगे चुने हुए कुछ संगीत, कुछ नहीं सिर्फ दो संगीत चुने हुए फिल्म दिल दिख देखो से निकाली हुई। तो चलें, हम और तुम और ये समा और ये है यादों का सफर।